इन्हें खींच के लाना, घसीट के लाना। वो नहीं जाना, कौन जाना चाहेगा? जहन्नम में जाना चाहे, वो तड़प रहा है, रुक रहा है, लेकिन उसको खींच के लाया जाएगा। इसके मुकाबले में आगे बढ़कर कुरान ये कहता है कि वो सी कल, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला, जन्नत ज़ुमरा, वहाँ जहन्नम में डालने के लिए खींच के लाया जाएगा, यहाँ जन्नत में लाने के लिए खींचेगा। यार जन्नत में खींचने की क्या ज़रूरत है यार, शौक से खुद ही जाएगा। ये नहीं, जहन्नम के लिए ठीक है कि वो जहाँ सामने आग जल रही है, डर रहा है, वो जाना नहीं चाहता, मगर जन्नत में खींच कर लाना क्या है? यहाँ पर आयतुल्लाह बशीर ने, नजफ़ी साहब क़िबला ने बहुत अच्छी तफसीर की है, जिसको उलमा ने बहुत अच्छे मानों में बयान किया है। वो तफसीर यह है कि अगर देखना चाहते हैं जन्नत को किस तरह से घसीट के लिए जाता है, अरबईन के जुलूस को देख लो, पैरों में छाले पड़ रहे हैं लोग, ऐसे 150-150 किलोमीटर से बूढ़े जो है निकल रहे हैं। ये कौन है? ये जन्नत की तरफ खींच के लाए जा रहे हैं। कौन ला रहा है? ये वो हैं, ये वो फरिश्ते हैं जो इन्होंने इनके दिलों में मोहब्बत हुसैन डाल, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। मोहम्मद वाजिल फरज एदल जन्नत उजलेफा, जन्नत उस दिन जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, जन्नत को करीब कर दिया जाएगा। जहन्नम जो है दूर होगी, जहन्नम आग है, जन्नत जो है करीब है, करीब, बिल्कुल करीब। इसीलिए कहा गया जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। क्या माने माँ के कदमों के नीचे? यानी अगर तुम जन्नत तलाश करना है तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पहलू में है। अब जैसे ही माँ बुज़ुर्ग हो रही है, परेशानी है कि माँ को घर में रखें या ना रखें। वो कहा जाता है कि 10 बच्चों को माँ पाल लेती है, मगर एक माँ को 10 बच्चे पालते नहीं हैं। ये क्या है? ये जानते नहीं हैं कि कितनी बड़ी अजमत है एक घर में बुज़ुर्ग का होना। एक हदीस तरबियत के औलाद के सिलसिले में हमने बयान की थी, एक सलवात पढ़ी मोहम्मद बहुत खूबसूरत हदीस है, वो ये है कि अल अशायखु फी उसरतिही कन्नबी फी उम्मतिही। एक बुज़ुर्ग का एक ख़ानदान में रहना ऐसे है एक जैसे नबी का एक उम्मत में रहना। यानी इतनी अजमत एक घर में एक बुज़ुर्ग का होना। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर माँ कोई बुज़ुर्ग घर में रह रही है तो बच्चों को परवरिश के लिए आधे मराहल हल हो जाएंगे, उठने बैठने, तरबियत करने, तमाम चीज़ें बच्चे जो हैं उस बुज़ुर्ग से सीखते चले जाएंगे। मगर इसको हमने आज की दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में आकर के इसको ज़रा सा इग्नोर करते चले जा रहे हैं, इस रहमत से दूर होते चले जा रहे हैं। इसीलिए रिवायत में है कि जो माँ बाप को एक मोहब्बत की निगाह से देखे, उस पर एक निगाह पर हज मकबूल उम्र मकबूल का सवाब है। यह हज मकबूल उम्र मकबूल हमने कई मरतबा कहा है, हमने हज किया है, उमरा किया है, कबूल है या नहीं हमें मालूम नहीं है। दुआ करने परवरदिगार रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, मालिक हमने ये कर दिया है अमल, तू कबूल कर ले। लेकिन यहाँ पर कबूल की भीख नहीं है, तुम अगर ऐसा करोगे तो मकबूल हज है, मकबूल उमरा है। एक माँ बाप से एक अच्छा बर्ताव, एक अच्छी गुफ्तगू, अच्छा सलूक माँ बाप के साथ इंसान को ये अजमत देता है, अल्लाह ताला तौफीक दे। उसके बाद है अलमत नफ्सुम्मा अहदरत, ये बहुत ही अच्छा कुरान है। कुरान है इल्म, गुज़श्ता हफ्ते हमने बताया था इल्म या तसव्वुर है या तस्दीक है। जब तक हम कनाडा नहीं आए थे सुनते थे नियाग्रा फॉल्स, ये इल्म तसव्वुर ही कहते हैं। जब फॉल्स को देखा अपनी आँखों से, ये हो गया तस्दीक, हो गई आँखों से हमने देख लिया। अब उस तस्दीक के भी दर्जे हैं, वो दर्जे और हैं, लेकिन देखा हमने, देख करके यकीन कर लिया, इसको कहते हैं तस्दीक। इल्म है हमको कि जन्नत है, मगर उसकी तस्दीक कब होगी? जब देखेंगे। कब देखेंगे? इंशाल्लाह। इसीलिए मोमिन जो है जन्नत में जाने का इंतज़ार नहीं करता कि वहाँ जा करके देखे, बल्कि क़ुरान ये कहता है अगर इल्म यकीन पैदा कर लो लतरउन्नल जहीम, जहन्नम को वहाँ नहीं देखोगे, यहाँ देखोगे। तो इंसान में वो खुदा ने सलाहियत दी है मोमिन में, मोमिन अगर इन पर्दों को हटा दे तो जन्नत को भी देख सकता है, जहन्नम को भी देख सकता है। जन्नत मरने के बाद इल्म हासिल कर रहा है देखने के बाद ना, अगर इल्म हासिल करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहाकुमुत्तकाथुर हत्ता ज़ुरतुम।

इसी तरह है। आप चलते हैं दो टांगों पे, अगर एक टांग में तकलीफ हो तो फिर आपका वॉक करना जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर एज ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप स्टिक ले लेते हैं, आप स्टिक के सहारे चलते हैं ताकि आप बैलेंस चल सकें, वरना आपका बैलेंस ही आउट हो जाएगा। तो दीन आकर हमें ये बता रहा है कि बेउनवान उम्मत मुसलमान आपके अंदर बैलेंस होना चाहिए। तो पहले हम देख रहे हैं कि बैलेंस हमारी बॉडी और बैलेंस हमारी रूह के दरमियान, ये एक बैलेंस ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है। यानी रूह की ग़िज़ा भी चाहिए और जिस्म की ग़िज़ा भी चाहिए, और एक बैलेंस अंदाज में चाहिए ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। एक इंडिविजुअल हैसियत में भी बैलेंस होना चाहिए और सोसाइटी की हैसियत में भी बैलेंस होना चाहिए। अगर सोसाइटी और इंडिविजुअल के दरमियान बैलेंस नहीं होगा तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। यानी ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपने लिए जिएं, सोसाइटी के लिए नहीं जिएं। सोसाइटी में क्या हो रहा है, कम्युनिटी में किसी को क्या हो रहा है, होने दो, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। जब तक मेरा मतलब पूरा हो रहा है ये काफ़ी है। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ सबको एक दूसरे की फिक्र है, एक दूसरे का लोग ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की मदद को पहुँचते हैं। ये एक इंडिविजुअल हैसियत में है, एक सोसाइटी की हैसियत में। इसी तरह जब आप उम्मत की स्ट्रक्चर में देखते हैं तो जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, वो जब मदद के लिए पुकार रहे हैं तो कितने लोग उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं, उस उम्मत को, उस उन लोगों को कितने लोग उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं उनकी मदद के लिए तो ये बैलेंस नहीं है। हम अपने इंडिविजुअल हैसियत में तो ठीक है, लेकिन हम एक सोसाइटी की हैसियत में कंप्लीट नहीं है, हम उम्मत वसता नहीं है, क्योंकि हम उनकी मदद के लिए नहीं कुछ कर रहे। जो भी हमारी कैपेसिटी में है हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि बैलेंस आउट हो गया। और जब भी इन बैलेंस आउट होगा तो फिर प्रॉब्लम्स शुरू होंगी, और वो आज आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि एक दफा ये फलस्तीन से शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते अब ये दूसरे तमाम मुल्कों में आती जा रही है। जैसा कि आज आप ईरान में वॉर की सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि जुल्म हो रहा था और हमने इलाज नहीं किया, हमारी बॉडी बीमार थी, हमने उसकी ट्रीटमेंट नहीं की, अब वो बढ़ते बढ़ते कैंसर बनता शुरू हो गया, वो पूरी बॉडी को खा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे उसके लिए। इसी तरह एक लेवल पे प्रॉब्लम शुरू हुई दुनिया में, फलस्तीन पे 70 साल हो गए, 50 साल से ज़्यादा हो गए जुल्म जुल्म सितम हो रहा है, उसका कोई सद्देबाब नहीं किया गया, सब चुप रहे देखते रहे, और अब वो फैल कर पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रहा है, क्योंकि बैलेंस अब आउट हो चुका है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें ये देखना हमारे अपने लिए कि मेरी सोच में कितना बैलेंस है। अगर हम बात कर रहे हैं जिस्म और रूह के बैलेंस की, तो हम ये बात भी कर रहे हैं कि मेरे अंदर, मेरे वजूद में दो चीज़ें हैं, एक मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल है, मेरी अक्ल है, और मेरे इमोशंस हैं। इन दोनों में कितना बैलेंस है, मेरी पर्सनालिटी कितनी बैलेंस है, या मैं टोटली लॉजिकल हूं, हर चीज लॉजिक पर बेस्ड है, या हर चीज मेरी इमोशनल बेस्ड है, मैं किस किस्म का इंसान हूं। आया मेरा, मेरी लॉजिक और मेरे इमोशंस दोनों बैलेंस हैं मेरे वजूद में या नहीं। जहां मुझे इमोशनल होना चाहिए वहां मैं इमोशनल होता हूं या नहीं, जहां मुझे लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए मैं डिसीजन लेता हूं या नहीं। इसी तरह इसी सोच को मैं अपनी फैमिली में देख लेता हूं। मेरी फैमिली में मेरे वाइफ भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी वालदेन भी हैं। अब घर में कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं हमेशा ये सोचता हूं कि जो मैं सोचूंगा, जो मेरे दिमाग में आएगा, बस वही होगा, यानी दूसरों की भी वैल्यू है, उनकी भी अहमियत है, और ये बात इमोशनल है तो उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, या मैं कहूँ नहीं ये तो इमोशन का मसला है, मुझे कुछ नहीं लेना देना इससे। या घर में हम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो आपके बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, आप किसी एक को ज्यादा फेवर करते हैं, किसी को कम करते हैं, किसी को कहते हैं ये मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, ये मेरा सबसे अच्छा बच्चा नहीं है, इसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, इसको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, एक को फेवर करता हूँ, एक को फेवर नहीं करता हूँ, तो क्या बैलेंस घर में है या बैलेंस घर में नहीं है। इसी तरह आपके बच्चे आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं या आपकी वाइफ को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं बच्चे या बैलेंस नहीं करते हैं बच्चे।
ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल बात है।

कि जिंदगी में खुदा ने जो उम्मत को वसीदा करार दिया, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक बेसिक बात हम कर रहे हैं कि क्या हमारी जिंदगी बैलेंस लाइफ के साथ गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। क्योंकि जब हम बैलेंस कर पाएंगे अपनी जिंदगी में तो आगे भी बैलेंस आएगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी मैं एक इंडिविजुअल के तौर पर देख रहा हूँ, अपने जिस्म और अपने रूह को देख रहा हूँ कि मेरे जिस्म और मेरा रूह बैलेंस्ड है या नहीं है। फिर मैं मेरा रोल एक घर के अंदर एज अ फादर और एज अ सन, मैं उसमें बैलेंस कर पा रहा हूँ। मैं अपने राइट्स, जो मेरे राइट्स हैं, जो मेरे वालदैन के राइट्स हैं, मेरे बच्चों के राइट्स हैं, मैं उनको दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, वो बैलेंस्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम आउट हो जाएगा और जब फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी तो पीस ऑफ माइंड चला जाएगा। अगर इंसान की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। जैसे कि इंसान के जिस्म का, अगर उसका पेट खराब हो जाए तो कोई भी खाने में उसे टेस्ट नहीं आता है। आप जितना भी डिलीशियस फूड रख दें उसको टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसका पेट खराब हो चुका है, उसका मैदा खराब हो चुका है। तो आज मेरी सोच कैसी है? क्या मेरी सोच पीसफुल है? क्या मेरे अंदर सुकून पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? अगर मुझे सुकून नहीं है जिंदगी में, मुझे परेशानी लगी हुई है, मुझे टेंशन है, मैं स्ट्रेस में रहता हूं, इसका मतलब है कि मेरे अंदर बैलेंस नहीं है, मेरी फिक्र में बैलेंस नहीं रहा। अगर मैं हमेशा डिप्रेस रहता हूं, हमेशा मैं एंग्जाइटी में रहता हूं, हमेशा मैं टेंशन में रहता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे इमोशंस डिस्टर्ब है, उसमें बैलेंस नहीं है। मुझे उसको लेकर आना है ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूं, एक पॉजिटिव जिंदगी गुजारूं, मैं अच्छा सोचूं, मैं क्यों खुश नहीं रहूं, मैं क्यों सेटिस्फाई नहीं रहूं, जबकि मैं मोमिन हूं, मुसलमान हूं, खुदा का मानने वाला हूं, पंजतन का मानने वाला हूं, अहले बैत का चाहने वाला हूं, तो मैं क्यों नहीं खुश व खुर्रम और पुर ईमान जिंदगी गुजारूं? अगर ऐसा नहीं है तो उसका मतलब है कि मेरा बैलेंस आउट है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, ये मेरे अपने लेवल पर है। अब जो बात हो रही है कि उम्मत वसता करार दिया है, यानी मैं बैलेंस करता हूं पूरी दुनिया को, खुदावंद आलम ने जो आपको उम्मत वसता करार दिया, यानी आप दो एक्सट्रीम्स पर बैलेंस करते हैं। एक उम्मत वो है जो मटीरियलिस्टिक है, जिसका गोल ही मटीरियल को गेन करना है, पावर को गेन करना है, वेल्थ को गेन करना है। ये कौम, ये लोग, ये फिक्र, इनकी यही ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया हड़प कर लो। उनका टारगेट ही यही है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा दुनिया को हासिल करना है। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपके सामने ये उम्मत पूरी मौजूद है, जो एस्टीम फाइल वाली उम्मत है, या जो गैंग है एस्टीम फाइल का, वो क्या है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या ये बैलेंस्ड लोग हैं? क्या इनकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड है? नहीं, ये एस्टीम फाइल वाले जितने भी लोग हैं ये सब दुनिया को हासिल करना चाहते हैं, दुनिया की कुदरत, दुनिया की वेल्थ, दुनिया की शोहरत, जो कुछ भी मटीरियल है ये उनको चाहिए। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप मुसलमान हैं या आप मुसलमान नहीं हैं, आपका कोई रिलीजन है या आपका कोई रिलीजन नहीं है, आप मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है। दुनिया का कोई डिसिप्लिन है, इससे उनको कोई गर्ज नहीं है। यूएन चार्टर है, उसको वो नहीं मानेंगे, वो किसी भी रूल को, डिसिप्लिन को नहीं मानेंगे। उनको सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है, उनके अंदर बैलेंस नहीं है। और आज जितना जुल्म आप देख रहे हैं दुनिया में हो रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों, घर के बच्चे हों, ख्वातीन हों, बूढ़े मर्द हों, उनको सबको खत्म कर देना है। उनको क्या चाहिए? ऑयल चाहिए, उनको वेल्थ चाहिए, उनको कुदरत चाहिए। ये जो लीडर्स हैं जो रूल कर रहे हैं, ये जो क्लास है जो रूल कर रही है, क्या ये बैलेंस पर्सनालिटी है? नहीं। क्या ये बैलेंस उम्मत है? नहीं, ये एक्सट्रीम है। इसके मुकाबले में एक और उम्मत है जो मटीरियलिस्टिक सोचती ही नहीं है, जो सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की बात करती है, जो सिर्फ ये बात करती है कि स्पिरिचुअली हमें डेवलप करना है। ये मुसलमान नहीं है, ये स्पिरिचुअल दूसरे, ये खुदा को भी नहीं मानते, ये बुद्धिस्ट टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ स्पिरिचुअल वे। अब इनके ये कैसे लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दुनिया को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, ये जाके जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, गारों में रहते हैं, किसी से ताल्लुक नहीं रखते, ना शादी कर

के कहता है ना ये एक्सट्रीम चाहिए ना ये एक्सट्रीम चाहिए, तुम्हें बैलेंस जिंदगी गुजारनी है। उम्मत वसता तुमको बनाया है, दुनिया भी लो आखरत भी लो, दोनों को लेके चलो। इस्लाम का फोकस इस बात पर है कि आप दोनों को लेके चलें, एक सिर्फ इंडिविजुअल की हैसियत में ना सोचें, एक फैमिली की जिंदगी गुजारें, एक कम्युनिटी की जिंदगी गुजारें, एक उम्मत की जिंदगी गुजारें, उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। तो क्या मैं ऐसा सोचता हूँ? मैं अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपनी उम्मत के बारे में, इंसानियत के बारे में मैं सोचता हूँ तो फिर मैं कुछ करूंगा, अगर मैं नहीं सोचता हूँ तो फिर मैं नहीं करूंगा। तो ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव है कि इस्लाम चाहता है कि हम आगे बढ़े बेउनवाने उम्मत, बेउनवाने उम्मत। अब हम क्या कर रहे हैं? अगर हारमोनी नहीं है इस दुनिया में तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीन और दुनिया में तवाजुन, दीन और दुनिया में बैलेंस कैसे होता है? कुरान करीम में सूरह नमल की आयत है, हाजा मिन फजल रब्बी लियब्लुअनी अशकुर अम अकफुर। ये किसके लिए था? ये आयत किसके लिए नाजिल हुई थी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। उनके पास क्या था? हजरत सुलेमान के पास दुनिया का सब कुछ था, उनके पास सल्तनत थी, ताकत थी और दौलत थी। जब आपके पास कुदरत हो, दौलत हो, सल्तनत हो, सब कुछ हो, तो फिर बैलेंस कैसे होगा? हाजा मिन फजले रब्बी, आप खुदा को याद करेंगे। अगर आप कुदरत के बाद, दौलत के बाद, सब कुछ के बाद खुदा को याद करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं तो आप एक बैलेंस्ड हैं। अगर आप नहीं याद करते खुदा को और भूल जाते हैं और आपके आपके अंदर एक गुरूर आ जाता है तो फिर आपकी बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं है। आज दुनिया के अंदर जिन लोगों के पास कुदरत है क्या वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं? खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, वो और कुदरत के पीछे भागते हैं, वो और दौलत के पीछे भागते हैं, वो और इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो अगर दुनिया में मुझे ये देखना है कि दुनिया में मैं और उम्मत बेनवाने बैलेंस्ड है या नहीं है, तो देखना पड़ेगा कि जिनके पास सारी चीज़ें हैं वो खुदा का शुक्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो खुदा का शुक्र नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो लोग कामयाब लोग नहीं है, वो सक्सेसफुल पीपल नहीं है। हम अपने बच्चों को गलती से क्या सिखाते हैं? सक्सेसफुल पर्सनैलिटी की तारीफ क्या करते हैं? आज हम हमारी कम्युनिटी के बच्चों से, बाहर के बच्चों से पूछें कि बेटा हु इज सक्सेसफुल पर्सन, तो वो क्या डिफाइन करेगा? उसका रोल मॉडल कौन है? ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको अच्छी तरह से पता है कि वो किसको डिफाइन करेगा कि ये सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं। इससे पता चल जाएगा कि हमारे बच्चों के जहनों में कौन सा इन्फ्लुएंस है, कौन सी चीज इन्फ्लुएंस कर रही है जो उनको सक्सेसफुल होने की तारीफ क्या बता रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बताएं, बेटा तुम्हारे पास वेल्थ भी होना चाहिए, हेल्थ भी होनी चाहिए और ईमान भी होना चाहिए ताकि तुम शुक्र कर सको। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास बहुत वेल्थ हो और तुम शुक्र ना कर सको खुदा का, तो ये फिर हमारा रोल मॉडल नहीं है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, बैलेंस इबादत में, यानी दुनिया भी हो और इबादत भी हो, खुदा की हम बंदगी भी करें, ना सिर्फ शुक्र करें बल्कि बंदगी भी करें। तो जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह साद में आयत नंबर 26, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, ए दाऊद हमने तुम्हें दुनिया का खलीफा बना दिया, यानी तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन गए हो। तो उनके पास क्या चीज़ थी? हुकूमत थी, पूरी दुनिया की हुकूमत उनके पास थी, तो क्या ये काफ़ी था कि हुकूमत उनके पास आ जाए? वो क्या कर रहे थे इसके बाद? वो खुदा की इबादत भी करते थे, यानी हुकूमत भी आ गई और साथ में इबादत भी कर रहे हैं। तो ये बैलेंस है, दुनिया भी है आखिरत भी है, दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। तो अगर मुझे ये देखना है कि मेरे पास कुदरत है तो मैं इबादत करता हूँ या नहीं करता हूँ, मेरे पास दौलत है तो मैं शुक्र करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो मेरी बैलेंस पर्सनैलिटी बन रही है, उम्मत भी बैलेंस हो रही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ जब वो मछली के पेट में चले गए? इनसे हमने क्या सीखा कि खौफ और उम्मीद, ये दोनों चीजें कभी खत्म नहीं होनी चाहिए हमारी जिंदगी से, क्योंकि उन्होंने यही कहा था ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। वो दो कंडीशन में थे, पहला कंडीशन खौफ
उसमें भी उन्होंने खुदा को याद रखा, और दूसरी कंडीशन ये कि उन्होंने उम्मीद लगाई कि वो खुदा उनको निजात दिला देगा, और इसी से फिर वो कामयाब हो गए, खुदा ने उनको निजात दे दिया।

ये दोनों चीजें आपके ईमान की निशानी है, आपके रिलेशनशिप की निशानी है। क्या हमारी जिंदगी में खौफ भी है और उम्मीद भी है या नहीं? या मैं अब मायूस हो चुका हूं, मैंने गिव अप कर दिया है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा सोचने लग जाएं तो बस फिर हमारा एंड आ चुका है। अगर इस वक्त भी आपको ये उम्मीद हो कि कुछ हो सकता है तो इसका मतलब है कि यू आर अलाइव स्पिरिचुअली, आप अलाइव हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में एक ये फिक्र दी जाती है कि जब आप सीनियर सिटीजन हो गए तो आप किसी काम के नहीं है। सीनियर सिटीजन का क्या काम है या नहीं है, ये फैक्ट है या नहीं है? सीनियर सिटीजन का क्या रोल है सोसाइटी में, आपका क्या इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में? आपसे मतलब, आप नहीं है, आपसे मतलब सीनियर सिटीजन है, आप तो माशाल्लाह जवान है सब। अगर ये मैंने यकीन कर लिया है कि सीनियर सिटीजन होने के बाद मेरा कोई रोल नहीं है सोसाइटी में, तो ये किसने बनाई है आपकी, आपका रोल किसने बनाया, ये किसने आपको ये सिखाया है, किसने इन्फ्लुएंस किया आपके ऊपर? इस्लामिक पर्सपेक्टिव में 40 साल के बाद तो नबी अकरम सोसाइटी में आए काम करने के लिए। जितने भी अंबियाओं ने आके काम किया उनकी उम्रें ज्यादा थी, हमारे मराजे कराम की उम्र बहुत ज्यादा है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं। ये इस्लाम की फिक्र नहीं है। इस्लाम एज को नहीं कहता कि एज से इंसान बूढ़ा होता है, ईमान से इंसान बूढ़ा होता है। जिसका ईमान कमजोर होता है वो ज़ईफ़ होता है, जिसका ईमान ज्यादा ताजा होता है वो जिंदा होता है, वो हयात पाता है। तो बस जिसके अंदर ईमान ज्यादा है वो जवान है, उसके अंदर कुव्वत है, इरादा है, वो कर सकता है। इस चीज को जहन में समझना जरूरी है। और अब आप हमें अपनी नस्लों को ही समझाना है कि ये एज इज नॉट द फैक्टर, फिजिकल इज नॉट द फैक्टर। मुझे मालूम है माशाल्लाह दिल से आप सब जवान हैं, अगर आपको मौका मिल जाए तो आप भरपूर जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और इसी पे हमें काम करना है, हमें ये नहीं सोचना है, ये सोच वेस्ट की है कि आफ्टर 60 यू रिटायर, ये हमें वेस्ट ने ये सोच दी है, इस्लाम ने ये सोच नहीं दी। इस्लाम तो कहता है आपका तकवा में इजाफा हो रहा है, आपके तजुर्बे में इजाफा हो रहा है, आपके हिल में इजाफा हो रहा है, आपकी सब्र में इजाफा हो रहा है, आप एक हाई स्टेटस पे पहुंच गए, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, क्योंकि माँ बाप की दुआएं जो है सबसे ज्यादा कबूल होती हैं, तो आपका बहुत बड़ा स्टेटस है। लेकिन अगर हम अपने स्टेटस को समझेंगे तो हमारा स्टेटस बड़ा होगा ना। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ खुदावंद आलम से कि खुदावंद आलम हमें एक बैलेंस जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए, और जो कुछ दुनिया में जुल्म सितम हो रहा है इसको नीस्तो नाबूद फरमा। और इस वक्त शिया ने जहां जहां कहीं भी हैं उनकी जान और माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, और ईरान को कामयाबी और सरबुलंदी अता फरमा, और मजलूमों को जालिमों पर गलबा अता फरमा, और हमें हक का साथ देने की तौफीक इनायत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।